0: You're listening to NPR, Manawatu People's Radio. Te reo irirangi o ngā tangata o Manawatu. It's 6 o'clock. Community notices on NPR.
1: Hey, your phone's ringing. Hello? Your phone?
2: Oh, yeah.
1: You aren't going to answer it?
2: No. No, it's fine.
3: When you're being chased by lenders, everything feels like a threat. So don't struggle on your own. Call Money Talks, your free financial helpline. We'll give you the tools and knowledge to turn things around. Call 0800 345 123. Money Talks, your free financial helpline.
0: Community notices are a free service that anyone can use. Fill out the online form at npr.nz or call 06 357 9340.
4: Collaborative Voices. Get the latest on the community and non-profit sector with Roz Rice from Community Networks Aotearoa in Wellington.
0: Collaborative Voices on Manawatu People's Radio, Mondays at 9am.
5: Hi everyone, welcome to the Solar Train. We're about to board, so everybody's welcome to get on. Thank you.
6: Solutions to the world's problems, no matter how big or small.
7: Fungi are not animals, they're not plants, they're a kingdom of their own.
6: We meet the people who are making things better.
8: Wow, this is pretty cool.
6: People Fixing the World from the BBC.
0: The BBC World Service. Midnight till 8am every day on NPR.
9: नमस्कार किया उरा पामस्टन नो मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंकिता शर्मा और आप सुन रहे हैं एमपीआर पर सबसे जबरदस्त और आपका अपना द इंडियन शो और दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी चीज के बारे में जो हफ्ते में कम से कम 7 या 8 बार हमारे दिमाग में आती ही आती है जिसे हम कहते हैं व्हाई मी यानी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है याद है जब सुबह-सुबह हम लोग 5 बजे उठकर जॉब के लिए लेट हो रहे होते हैं और अचानक से बोलते हैं कि मम्मी हमारे लिए चाय जल्दी बना देना और तब हमें याद आता है कि मां तो हम इंडिया में ही छोड़ आए हैं यहां तो सिर्फ है हमारी तन्हाई तो जल्दी-जल्दी तैयार होकर हमें चाय बनानी पड़ती है अपने लिए नाश्ता तैयार करना पड़ता है और इन सभी कशमाकश में एक चीज जो हमारे दिमाग में आती है और हमारे दिल से निकलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों मैंने ऐसे क्या कर्म करे थे वेल दोस्तों आज इसी क्यों पर व्हाई मी पर पोस्टमार्टम करेंगे और बने रहिए हमारे साथ तब तक सुनिए एक ऐसा गाना जो कि मेरे दिल के वाकई में बहुत

जो है समा फिर कल हूं या ना हो। बचपन से ही हमें एक चीज तो सिखाई गई है, जब भी एग्जाम होता था और हमारा दिल नहीं करता था वो एग्जाम करने का, तो मम्मी बोलती थी कि बेटा वो एग्जाम जल्दी से पास कर लो, फिर तो मजे ही मजे। बोर्ड का एग्जाम दिया तब भी हमें यही किया बोला गया कि ये कर लो, फिर तो मजे ही मजे। उसके बाद आई ट्वेल्थ, फिर आई ग्रेजुएशन और डिग्री, और हमें इसी दौड़ में हम भागते रहे कि बस ये कर लो, उसके बाद तो मजे ही मजे। दोस्तों, मजे वाली कोई चीज वो होती है जब आप उस समय को, उस टाइम को जीते हैं, और वही एक एनआरआई की लाइफ है। हम लोग मजे के लिए हम भागते रहते हैं, पर मजा वो है जो हम प्रेजेंटली जिस समय को हम जी रहे हैं। याद कीजिए जब हम वीजा का फाइल कर रहे थे या फिर हम पीटी दे रहे थे, तब भी हमें ये कहा गया था कि एक बार वहां पहुंच जाओगे तो मजे ही मजे। लेकिन असली मजा किस में है? उस समय को जीने में है, उन चुनौतियों के साथ जीने में है जिससे आपको एक नया स्किल मिलता है। मैं कहती हूं कि एनआरआई होना एक आर्ट ही है, क्योंकि इंडिया में जब भी थे हम, तो हम यही फील करते थे कि वहां जाएंगे, वहां की अच्छी लाइफ होगी। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो चीज़ें बदल जी जाती है। चुनौतियों का सामना हम सभी को जीवन में करना पड़ता है, भले ही हम भारत में हो।

या हम न्यूजीलैंड में हो, हर चीज बड़ी ही डिफरेंट होती है. अब जैसे कल की ही बात लीजिए, मैं पामस्टर नॉर्थ की जो बारिशें हैं उसको एंजॉय कर रही थी और सडनली मेरे दिमाग में एक चीज आई कि अरे आज तो थर्सडे है और आज तो मुझे कूड़े का डब्बा बाहर रखना होता है. तो मैंने बिन उठाया और अपने दिन की शुरुआत करी. बिन उठा के दिन की शुरुआत इस तरीके से करी कि मैं उसे घसीटते हुए ले गई और बाहर रखा. पर आपको पता है कि मेरा अटायर कैसा था? मैंने नीचे पजामा डाल रखा था और ऊपर रेनकोट. ये है एनआरआई की जिंदगी कि हर चीज को हमें खुद करना होता है. अभी कुछ टाइम पहले मेरे कोई नोन थे, उन्होंने बताया कि प्लम्बर जो है इतने पैसे मांग रहा है. तो उन्होंने प्लम्बर के लिए क्या किया, उन्होंने अपने जो एकेडमी है, जो फ्री एकेडमी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं, यानी हमारा प्यारा यूट्यूब, उसमें से देखा कि जो नल है उसको चेंज कैसे करें और उसे वो खुद ही चेंज करने लग गए. यही है खूबसूरती एनआरआई की कि जब कोई चुनौती आती है तभी हम एक नया स्किल लेकर आगे बढ़ते हैं. तो जब भी अगर सोचें कि यार क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो याद रखिए कि जब भी कोई भी आपका एग्जाम होगा उसके बाद आपको एक नया स्किल मिलेगा और वही स्किल आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा. तभी तो खुशी खुशी बोल देते हैं कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने ये किया ही हुआ है. और वो कैसे, वो मजे तभी आप लुटा सकते हैं जब आप अपनी चुनौतियों में अपना रास्ता खुद बनाए. दिस इज अ लाइफ ऑफ बीइंग एनआरआई.

बातें कुछ अनकही सी होने लगी. और बातें कुछ अनकही सी कुछ ऐसी भी होती हैं जब हम न्यूजीलैंड में होते हैं और इंडिया से हमारे दोस्तों के हमारे रिश्तेदारों की बातें जो हम सुनकर हैरान हो जाते हैं. बहुत अजीब अजीब सी बातें आपको सुनने मिलती हैं. एक तो बात वही कि यार मज़े हैं तेरे, न्यूजीलैंड में रह रहा है, साफ जगह पे रह रहा है और डॉलर कमा रहा है. बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल ही सही बात है. लेकिन सेकंड चीज़ जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार क्या बोल रहा है. कहते हैं कि न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो तुम लोग तो सबके सब गोरे हो गए होगे. भाई इनको अब कौन समझाए कि यहाँ धूप इतनी तेज है कि गोरे होने की बजाय हम लोग तंदूरी चिकन बन जाते हैं. जी हाँ दोस्तों, यहाँ ओजोन लेयर जो है वो इतनी ज़्यादा कम है कि जिसकी वजह से जो धूप है हमें बहुत ज़्यादा तीखी लगती है. और मैं कहूँगी कि 15 या 20 मिनट में अगर आप धूप में रहें तो आपको वो स्कार्स, वो जो निशान होते हैं टैनिंग के, वो आपको नॉर्मली दिख जाते हैं. हाँ मैं मानती हूँ न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके हमें सोचना पड़ता है बाहर निकलने से पहले, सनस्क्रीन लगानी पड़ती है. तो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए, मेरे उन सभी रिश्तेदारों के लिए जो मुझे कहते हैं कि न्यूजीलैंड जाके तो तू गोरी हो गई होगी, उसके लिए यही संदेश कि गोरी तो नहीं लेकिन हाँ चिकन तंदूरी वाली फील कभी कभी आती है जब हम शीशे में खुद को देखते हैं. और दूसरी बात ये कि बेटा कब सेटल हो गए, अब तो लाइफ में तुम्हारे मज़े ही होंगे. हम सेटल होना हो बट अगर आप रह रहे हैं यहाँ तो सबसे पहले जो आपको सेटल करना पड़ता है वो होती है यहाँ की घास. जी हाँ दोस्तों, जब हम एक घर में रहते हैं हमारे आसपास एक पूरा एक एरिया होता है जहाँ पे घास होती है और उस घास को 15 से 20 दिन में मूविंग करना पड़ता है, जिसके लिए या तो आप खुद करें या फिर आप बाहर पैसे दें. तो अपने सेटलमेंट का पता ही नहीं है क्योंकि हमें पहले घास जो है उसको सेटल करना पड़ता है. यही है खूबसूरती NRI बनने की कि आपको अपने छोटे छोटे काम जो है वो खुद करने पड़ते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे कामों में जो हुनर जो आपके हाथों में आता है वो काबिले तारीफ है. आपको सेल्फ मेड इंसान अगर बनाता है तो आपको NRI ज़रूर बनना चाहिए. इतना आप अपने घर से, अपनी भारत में रहकर वहाँ से नहीं सीखते जितना आप बाहर आके सीखते हैं. क्योंकि सही मायने में अभी तक मैं अपना अगर एक्सपीरियंस देखूँ तो यहाँ का कल्चर इतना डिफरेंट है और डिफरेंट कल्चर में सब जो है यूनाइट होकर साथ रहते हैं, यही खूबसूरती है. कोई रेसिज्म नहीं है, बहुत प्यार से सब एक दूसरे से मिलते हैं और सभी लोगों को पता है कि भारत में लोग दिवाली बनाते हैं, भारत में लोग होली बनाते हैं. मैं बात कर रही हूँ पामस्टन नॉर्थ से, तो हम पामी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर पे इस तरीके के इवेंट्स हमेशा होते रहते हैं जिसमें हम अपने भारतीय होने के बावजूद भी और भी जो हमारे दोस्त हैं जो दूसरे कल्चर से हैं वो यहाँ आकर हमारे साथ हमारे त्योहारों को मनाते हैं. ये खूबसूरती है और यही प्यार है जो हम यहाँ आकर लेते हैं. तो कभी भी अगर ये सोचे कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो याद रखिएगा कि ये जो वाई मी है इसने बहुत सारी ऐसी खूबसूरत यादें, खूबसूरत दोस्त आपको दिए हैं जो भारत में रहकर आपको शायद नहीं मिलते. तो चलिए दोस्तों, अब तो हुई हमारे रोने धोने की बात कि हमें यहाँ पे ग्रास काटनी पड़ती है, हमें यहाँ पे बर्तन मांजने पड़ते हैं, अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, कोई भी आप मेड रखने के हिसाब से

नहीं कर सकते काम, बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सपेंसिव होती हैं। और उन्हीं सब चीजों की कश्मकश में आप जब घुसते हैं तो आप बोलते हैं वाई मी, मैं ही क्यों। तो अब वाई मी को ट्राई मी में बदलने का सुनहरा अवसर आ चुका है। आज हम अभी छोटी छोटी उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे आप वाई मी को ट्राई मी में कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, जब बारिश में यहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है और आप छाता लेकर जाते हैं, छाता लेकर आप गए, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, मैं छाता लेकर गई तो सामने एकदम तेज हवा आई और छाता उल्टा हो गया। तब मैंने खुद से पूछा वाई मी, बट अचानक से मेरे दिल में आया ट्राई मी, यानी ठीक है छाता मेरा खुल गया है, अब मैं भीग कर तो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं उन चुनौतियों को पूरे तरीके से एक्सेप्ट करती हूं और मैं ऐसे ही अपने काम पे जाऊंगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वाई मी शिफ्टिंग टू ट्राई मी। और अब इसी के साथ दूसरा गाना जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है और बहुत ही अच्छा गाना है। हर बार मैं कहती हूँ कि ये गाना जो है ये आपको उठकर एक साथ गाना चाहिए, क्योंकि ये गाना जो है ना मेरे दिल के करीब भी है और मोटिवेशनल भी है। चलिए सुनते हैं।

दीजिए कि हम उसमें आगे बढ़ सकें, अपने जीवन को अच्छा चला सकें। तो वाई मी और ट्राई मी के इस संघर्ष के साथ हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये तो सच है कि एनआरआई की जो लाइफ है वो वाकई में इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस है। आप देखते हैं कि अरे वाह, ये तो डॉल्फिन के साथ फोटो खिंचवा रहा है, अरे वाह वहाँ पहाड़ कितने सुंदर हैं। और सही मायने में देखा जाए तो अभी तो हालात ऐसे हैं कि भारत में, स्पेशली दिल्ली की अगर हम बात करें, तो दिल्ली में आप सामने आसमान को देख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। वहीं जब आप न्यूजीलैंड में अपने दोस्त की फ़ोटो देखते हैं तो उसकी फ़ोटो से ज़्यादा आप जूम करके आसमान देखते हैं कि ओ माय गॉड, आसमान कितना ज़्यादा साफ है। और फिर आप अपने खुद के सपने बुनने लगते हैं कि चलो हम भी चलते हैं न्यूजीलैंड, या हम भी चलते हैं किसी ऐसी कंट्री में जहाँ जो है हमें ये सभी खुशियाँ मिल सके। बट इसमें एक मज़ेदार बात क्या है? इसमें मज़ेदार बात यह है कि हमारी जीवन जो है, जितना ज़्यादा आपको ग्लैमरस लगता है उतना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन चुनौतीपूर्ण के साथ मैं एक शब्द और मचाना चाहूँगी, वो है सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। सोचिए कि आप जो इंसान इंडिया में खुद अपने हाथ में एक गिलास जो है वो पकड़ ना सकता हो, वो यहाँ यूट्यूब से देखकर नई नई चीज़ें सीखता है और उसका एक्सपेरिमेंट करता है। तो ये खूबसूरती है एनआरआईज़ की, जहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ मिलकर, दोनों मियाँ बीवी एक साथ मिलकर अपने जीवन को अच्छा भी बनाते हैं और साथ मिलकर सभी काम करते हैं, चाहे वो ग्रास कटिंग ही क्यों ना हो। अभी कुछ टाइम पहले मेरे दोस्त का जब मुझे कॉल आया और उसने मुझे बोला ना कि तू तो डॉलर में कमा रहा है, तेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है। और मुझे पता है कि ये चीज़ हम सभी के साथ होती होगी, हमारे जो भारत में या और किसी जगह पे जो भी दोस्त है, जब वो हमारी ज़िंदगी सोशल मीडिया में देखते होंगे तो वो ये कहते होंगे कि वाह यार, तेरी ज़िंदगी तो बड़ी ज़बरदस्त है, तू डॉलर में कमा रहा है। लेकिन उनको क्या पता, मेरे सभी भाई बहन जो यहाँ पर पामस्टर नॉर्थ में हैं और न्यूजीलैंड में हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो वाकई में दिल में ये सोचते होंगे कि उनको क्या पता कि भले ही हम डॉलर में कमा रहे हैं लेकिन जा भी तो डॉलर में रहा है। भाई जो टमाटर इंडिया में आपको बहुत सस्ते आपको इंडिया में मिल सकते हैं, वो यहाँ हम 200 रुपये किलो में ले रहे हैं। तो जितने हम कमा रहे हैं वैसा ही खर्चा भी है, क्योंकि हम इंडिया में आके तो टमाटर ले जा सकते नहीं हैं। स्पेशली न्यूजीलैंड और इंडिया का अगर फासला देखा जाए तो वो बहुत ही लंबा है। तो यही असली संघर्ष है, यही हमारी असली कहानी है, क्योंकि ये कहानी जो है ये हमें बताती है कि हमें जीवन को कैसे जीना है। ट्राई मी में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है दोस्तों? दो चीज़ें हैं। ट्राई मी में सबसे पहले जो आपकी ज़िंदगी के चैलेंजेस होते हैं, आपकी चुनौतियां होती हैं, उनको आप इनवाइट करते हैं, उनको आप निमंत्रण देते हैं, उसको आप कहते हैं कि आजा, कोई परेशानी नहीं, मैं तेरे सामने हूँ, चल देखते हैं कौन जीतता है, तू या मैं। तो आप अपनी सभी चुनौतियों में अगर आगे ऐसे बढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि उसको आप एक कंपटीशन की तरह देखने लगेंगे। और जब हम लोग कंपटीशन की तरह किसी चीज़ को देखने लगते हैं तो उसको जीतने के लिए हम पूरा जोर लगा देते हैं। जब उसे पूरा जोर लगाते हैं तो डिफरेंट मेथड जो हैं हम उसमें वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें समझ आता है कि ये डिफरेंट मेथड ही जो है हमें इस कॉम्पिटिशन में जिता सकती है। और उससे ही आपका एक ऐसा क्लियर मेथड आपके हाथों में आता है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। तो चुनौतियों को जो है निमंत्रण देना शुरू कीजिए। चाहे न्यूजीलैंड में आपको कुछ भी करना पड़े, आप जीत सकते हैं, उसको पॉजिटिवली लीजिए। सकारात्मक ऊर्जा इंसान के अंदर अगर हो तो वो कुछ भी पा सकता है। दूसरी चीज़, जब आप कोई भी कंपटीशन में जाते हैं, उस चुनौतियों का सामना करते हैं, तो पता है आपको एक सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ क्या मिलती है? आपकी ताकत। मैं हमेशा देखती हूँ, जब भी आप किसी से बात करो और कहो कि आप में क्या ऐसा खास है या आप अपने बारे में डिफाइन करो, तो इंसान वो चीज़ें बोलता है जो ज़मीनी तौर से आप उससे कनेक्ट हुए ही नहीं होते हो।

जैसे अभी किसी से मेरी बात चल रही थी और मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, तो वो उसको परेशान होकर बोलने लगा कि अरे क्या ही है मेरे में, कुछ नहीं है, जॉब नहीं मिल रही. नहीं, आप सबसे पहले अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश कीजिए.